थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

गाते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुध्वनि 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मुनी 90.4 के LE कनसु पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादव के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLEV ध्वनि 90.4 FM। एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, जैसे ही हम स्पेशल प्रोग्राम का नाम सुनते हैं, हम उत्सुक हो जाते हैं कि हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आज कौन से मेहमान हैं। तो आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी वीणा बहन जी। ये एक सीनियर राजयोग टीचर है। ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर सिरसी की इंचार्ज है। इन्होंने एमए सोशियोलॉजी और एमएससी काउंसलिंग किया हुआ है। यह ब्रह्मा कुमारी से 1977 से जुड़ी हुई है। इन्होंने अलग अलग टीवी चैनल्स पर बात की है। पीस ऑफ माइंड चैनल पर इनके श्रीमद् भगवद गीता पर 360 से भी ज्यादा एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए हैं। और आज वो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन करने वाली है। नमस्ते और वेलकम।
1: नमस्ते।
0: सबसे पहले वीणा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस क्या है, क्या ये कोई बीमारी है या कोई अवस्था है, और ये किस उम्र में हो सकता है?
1: वैसे तो आजकल चारों ओर हम स्ट्रेस देख रहे हैं, तो स्ट्रेस देखते देखते जैसे आपने पूछा, कईयों के मन में ये आ जाता है कि जैसे दूसरी बीमारियां हैं वैसे स्ट्रेस भी एक बीमारी है। लेकिन वास्तविकता में स्ट्रेस एक मेंटल स्टेज है। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेस को समय पर मैनेज नहीं किया गया तो इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं।
0: ओके।
1: और स्ट्रेस क्या है, इसके लिए बहुत सुंदर एक डेफिनेशन हम लोग सुनाते हैं किसी बहुत अच्छे ऑथर का है। स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ पेन विच कम्स टू टेल यू देयर इज समथिंग यू नीड टू चेंज। कुछ बदलाव होना जरूरी है। जो चल रहा है उसमें कुछ बदलाव जरूरी है, इसे सूचित करने के लिए एक छोटा सा एक दर्द के रूप में वो महसूस होता है। जैसे कि पता ही नहीं, हेडेक शुरू हो गया, कोई रीजन नहीं था फिर भी हेडेक है, या बेहजमी अनडाइजेशन शुरू हो गया। क्यों हुआ तो सोचते बाद में चलता है कि कल मैंने थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट, मेरा लाइफस्टाइल था कुछ था। इसलिए ये स्ट्रेस कोई भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चों से बूढ़ों तक। आजकल हम ज्यादा यंगस्टर्स में भी देख रहे हैं, तो बुढ़ापे में भी देख रहे हैं, सब एज ग्रुप में। स्ट्रेस का कोई एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस है फिजिकली रिलेटेड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये मेंटली रिलेटेड है। और इसको एक साइकोसोमैटिक डिसीज के अंदर इसे लिया जाता है, क्योंकि होता मन में है लेकिन दिखता शरीर में। इसके कारण इसको साइकोसोमैटिक्स के इसमें लेते हैं। और स्ट्रेस अपने ही विचारों के श्रृंखला में होने वाले एक टकराव है। जैसे कि स्ट्रेस जुड़ा हुआ है मन से। मन में कई सारे विचार चलते हैं, जैसे कि सकारात्मक या पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी थॉट्स। ये चारों तरह के विचार जो चलते हैं, इसमें से ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स चलते हैं। एक डाटा ये बताता है कि मनुष्य एवरेज एक दिन में करीब 30,000 विचार करता है। उसमें से 2/3 ऑफ द थॉट्स आर वेस्ट।
0: अच्छा,
1: माना ज्यादा से ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स होते हैं। और वेस्ट थॉट्स और अननेसेसरी थॉट्स जो आते हैं, जिसको नेगेटिव थॉट्स भी कहते हैं, ये दोनों ज्यादा होने के कारण पॉजिटिव थिंकिंग कम हो जाता है। इसके कारण नेसेसरी थॉट्स को हम भूल जाते हैं। जैसे कि सब्जी बनाई, नमक डाला कि नहीं डाला, है ना, छोटी छोटी। बच्चा बैग पैक कर रहा है, जो नोट्स डालना चाहिए था उसके बदले दूसरा डाल दिया। ऐसे बिकॉज ऑफ वेस्ट थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, ये ट्रैफिक में ना नेसेसरी थॉट्स रह जाते हैं, जिसके कारण हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं।
0: जी हाँ। मैं अगला ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि स्ट्रेस के मानसिक और शारीरिक परिणाम क्या है?
1: जी, वैसे तो ये उद्भव होता है मन में, विचार तो मन में उद्भव होते हैं, लेकिन ये सोशली जुड़ी हुई थॉट्स है, जैसे कि कोई समाज के बदलाव के कारण फाइनेंशियली कुछ आगे पीछे हो गया, हलचल हो गया, या शरीर में कोई बीमारी आ गई। हम लोग आजकल एक बात सुनते हैं, मुझे बीपी है इसलिए गुस्सा आता है। ये आपने सुना होगा, मुझे बीपी है इसलिए गुस्सा आता है, लेकिन ये रॉन्ग थिंकिंग है। गुस्सा करते हैं इसीलिए बीपी हाई हुई है ना। ऐसी जो हमारी गलत फहमियां हैं, ऐसे कारण ये मानसिक भी है और शारीरिक भी है। होता मन में है लेकिन उसका इम्पैक्ट, इफेक्ट सारा शरीर में दिखाई देता है। जैसे कि छोटे से छोटी बच्चों को भी आजकल एसिडिटी हो रहा है। हम सोचते कुछ खाने के कारण, नहीं, खाना केवल खाना कारण नहीं है। अभी एग्जाम शुरू होगा तो बच्चे एसिडिक हो जाएंगे, माँ बाप एसिडिक हो जाएंगे, फीवर आ जाएगा, लूज मोशन शुरू हो जाएगा। कोई बाहर का कारण नहीं होगा, लेकिन मन के कारण बहुत सारी ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको तनाव, मानसिक जो उद्वेग है, व्याकुलता है, अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, लेकिन है ये मन में उत्पन्न होता है, लेकिन बाहरी कारणों से भी उत्पन्न होता है और उसका असर ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर पर दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं 80% ऑफ द डिसीज ड्यू टू मेंटल टेंशन, WHO के अनाउंसमेंट के प्रकार है ना
2: जी।
1: 80% ऑफ डिसीज अप टू कैंसर, उसका भी रीजन कई बार मेंटल स्ट्रेसेस होता है
2: जी। अब समझो हमें कोई भी तकलीफ है, शारीरिक मानसिक, कभी भी इंसान को तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम खुद उसकी उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं अपनी समझ के अनुसार, और फिर हम कुछ घरेलू नुस्खे आजमाते हैं
1: जी।
2: तो अगर किसी को बेसिक लेवल पर खुद का स्ट्रेस मैनेज करना है, खुद से खुद की मदद करनी है या कोई घरेलू इलाज करना है, तो क्या करना चाहिए?
1: पहले तो जिसको अगर पता चल गया स्ट्रेस है, पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कईयों को एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोगों को भी पता नहीं चलता कि मुझे स्ट्रेस है
2: जी।
1: वो नॉर्मल बिहेवियर समझ लेते हैं। स्ट्रेस को फाइंड आउट करें, मुझे स्ट्रेस है, पहले एक्सेप्ट तो करें मुझे स्ट्रेस है। फिर उसके बाद वो जो स्ट्रेस के रीजंस हैं, जैसे कि आप, मैं और आप बात कर रहे हैं, आपके बिहेवियर से मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा हट जाऊं वहां से ना, सामने ही खड़ा होकर मुझे क्यों इरिटेट होना है। ऐसे थोड़ा सा हम छोटे छोटे, या तो फिर सिंपली क्या कह सकते हैं, हम जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं तो थोड़ा पानी पी ले, कुछ कर ले और अपने आप को शांत करें। एक्सेप्ट, सत्य को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो स्ट्रेस होना कम हो जाता है हमारा, और उसके हम आदती हो जाते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में हम ट्राई कर सकते हैं अपने आप से, छोटी छोटी बातों में। फिर आगे चलकर भी अगर वो स्ट्रेस कम नहीं हुआ तो हम स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मेरा अनुभव ये कहता है, जब मनुष्य स्ट्रेस में होता है या तो वो चिल्लाता है या तो चुप हो जाता है। ये दोनों बहुत गलत है। चिल्लाने से और इरिटेशन बढ़ेगा
2: जी,
1: चुप रहने से सप्रेशन होगा, मन को दमन करते हैं
2: जी।
1: इसलिए जितना हो सके जब स्ट्रेस है तो हम नॉर्मल रहने का अभ्यास करें, स्ट्रेस के प्रभाव में ना आए, तब हम स्ट्रेस को मैनेज करना अपने आप में कर सकते हैं।
2: कर सकते हैं। अगर ये हम खुद से नहीं कर पा रहे, खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं
1: जी,
2: तो हम कहाँ से मदद ले, किससे मदद ले?
1: अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है, जरूरी भी है। हमारे पास कुछ हम क्वेश्चन एरियाज रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, ये टिक आउट करो, इससे आपका स्ट्रेस लेवल पता चलेगा। अगर स्ट्रेस लेवल ओनली 10% है तो इट इज मैनेजेबल, खुद में कर सकते हो। उससे ज्यादा है तो आपको किसी का मदद लेना बहुत जरूरी है
2: जी।
1: या तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपके दिल को हल्का करे, या तो फिर स्ट्रेस मैनेज करने के कुछ फिजिकल, कुछ इंटरनल मेथड्स है, उसको अपनाओ। फर्स्टली स्ट्रेस मैनेज करने का पहला तरीका है बी पॉजिटिव। अरे मुझे टेंशन है, मुझे टेंशन है, और हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर आपके ऊपर बर्डन है, वर्कलोड ज्यादा है, वो तो है ही, आप बार बार अगर कहते रहोगे मेरे वर्कलोड ज्यादा है, मेरा वर्कलोड ज्यादा है, तो वो आपको 10 times ज्यादा लगेगा। डोंट रिपीट योर प्रॉब्लम्स, करने से भी टेंशन ज्यादा होता है
2: जी।
1: उससे ज्यादा है, अगर हमको टेंशन कम करना है तो हमारे मन को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है उस काम से। और वॉकिंग इज अ बेस्ट रेमेडी टेंशन मैनेज करने का। वो भी वॉकिंग करते समय सिंगल वॉकिंग करें, किसी से बातें करते नहीं
2: जी।
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वॉकिंग का एक डेफिनेशन है ट्यूनिंग विद द नेचर। जितना हम नेचर से ट्यूनिंग करेंगे उतना टेंशन कम होगा। और जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें हेल्प करने वाली है मेडिटेशन। इस मेडिटेशन को अगर अच्छी तरह से हम डिफाइन करें, इट इज सेल्फ सुपरविजन है, खुद को देखना है और खुद के लिए थोड़ा टाइम देना है। और हम मेडिटेशन के लिए एक बहुत सुंदर डेफिनेशन सुनाते हैं, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन।
2: यस
1: है ना। अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन दो। हम टेंस आउट तब होते हैं जब हम दूसरों को देखते हैं, ये ऐसे क्यों करता है, हम इरिटेट होते हैं, है ना। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है हमारा, इसलिए भी हम स्ट्रेस होते हैं। तो उसको थोड़ा कम करें। और इम्पोर्टेंट क्या है, जो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना जब हम सीखते हैं ना, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है। अब फैमिली में 3-4 लोग हैं, समझिए किसी के पति गीला टॉवल सोफे पे छोड़ता है, बार बार वो छोड़ता है तो पत्नी इरिटेट होती है, उसके कारण घर में थोड़ा सा तनाव बढ़ता है, वो बड़ा बन जाता है फिर। लेकिन एक्सेप्टेड, जब वो बदल नहीं रहा है तो माता क्यों गर्म कर रहे हो
2: जी,
1: है ना। थोड़ा सा हमें ही अपने आप को बदलने का नेचर बना लेंगे तो स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं। और रोज का आदत बना लेंगे थोड़ा सा मेडिटेशन करने का, 5 मिनट सवेरे शाम, थोड़ा टाइम देंगे तो स्ट्रेस मैनेज करना इजी हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस मन से रिलेटेड है, मन खुद से रिलेटेड है, जिसको आत्मा कहते हैं, है ना। अगर हम अंदर से शांत हो जाएंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा।
2: कहते हैं कोई भी तकलीफ हो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर,
1: डेफिनेटली।
2: तो स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, कि वो हमारी स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए कि हमारे जिंदगी में स्ट्रेस बहुत कम आए या आए ही ना।
1: बिल्कुल, पहले घर के वातावरण को हमें पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। घर ऐसा जगह है मनुष्य का, बाहर कितना भी टेंशन हो, घर में आके मनुष्य सुकून पाता है। अगर आजकल हमारे घरों में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, ये प्लास्टिक बेस्ड जो भी चीजें है ना, ये सब नेगेटिव है। हमारे घरों में वो ज्यादा होता ही है आज के अनुसार, इसलिए घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, इसके लिए थोड़ा सा ओम का उच्चार करना खुद से, ताकि घर में एक माहौल अच्छा हो और मुझे भी अच्छा फील हो। प्रोनाउंसिंग ओमकार इज अ बेस्ट मेथड टू डेवलप द पॉजिटिव एनर्जी, इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे समस्याओं का प्रिवेंशन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अटेंशन देना, सभी सोए हुए हो, मैं उठ के ओंकार करूं, उनको डिस्टर्ब करूं, फिर ओंकार से नेगेटिव, ऐसे नहीं होने चाहिए, सोच के करना चाहिए। फिर घर में या बाहर में हम अपना नेचर थोड़ा सा पॉजिटिव बनाए, कुछ भी हो जाए हम उसे पॉजिटिव ले ले। देखिए, कुत्ता भौंकता है तो हम वापस भौंकते तो नहीं है,
2: नहीं
1: है ना। इसी तरह कोई गुस्सा कर रहा, कोई इरिटेट करा रहा है मुझे, लेकिन मैं क्यों हो जाऊं। इसलिए खुद को संभालना जब हम सीखते हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं
2: जी।
1: क्योंकि एक बार शुरू हो जाता है ना, आग लग जाता है तो बुझाना मुश्किल हो जाता है, लगने ही ना दे। ऐसे हम नेचर बना लेंगे तो इजी हो जाएगा।
2: स्ट्रेस मैनेज करना क्यों जरूरी है?
1: बहुत अच्छी बात है। आजकल हम क्या देख रहे हैं दुनिया में, स्ट्रेस पास करने का एक नेचर देख रहे हैं। हायर ऑफिसर से कुछ लेटर आया, उसने अपने कोलीग्स में ट्रांसफर कर दिया टेंशन, कोलीग्स ने अपने सबॉर्डिनेट्स में ट्रांसफर कर दिया, सबॉर्डिनेट्स ने कर्मचारियों में ट्रांसफर कर दिया, ऐसे करते जाते हैं, काम बनता नहीं है,
2: मल्टीप्लाई।
1: इसी तरह स्ट्रेस जब तक मैनेज नहीं करेंगे तो स्ट्रेस का जो बढ़ाव है उसे हम रोक नहीं सकते। एक बार स्ट्रेस बेस्ड एनवायरनमेंट बन गया तो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना, छोटा है तभी उसे वहां ही समाप्त करना बहुत जरूरी है। हाँ, हम ये मान के चल सकते कि हम 100% स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि चारों ओर स्ट्रेस ही है। लेकिन एक बात हम सोचे, कोई मछली बेच रहा है, मुझे लेना नहीं है, ठीक है, वो सस्ते में दे या फ्री में, मैं तो नहीं लूंगी, मुझे लेना ही नहीं है,
2: लेना ही नहीं है।
1: इसी तरह कोई स्ट्रेस बेच रहा है, मुझे लेना नहीं, अगर मैं अंदर से स्ट्रांग हूं, मुझे लेना नहीं है, जब मैं अपने आप से फिक्स कर लेती हूँ मुझे स्ट्रेस लेना नहीं है, देने वाला चाहे कैसे भी दे, मैं नहीं लूंगी, लेने वाला स्ट्रेस लेना बंद करे, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इजी। इससे क्या होगा, हमारी डिसीज भी कम होंगे, टकराव कम होगा, माहौल बदलेगा, मन शांत रहेगा, घर शांत रहेगा। तो हम जीवन क्यों जीते, केवल पैसे के तो लेने ही जीते ना, तो खुशियां हम अनुभव कर सकते हैं। खुश रहने के लिए, जिंदगी को वाह वाह बनाने के लिए हमें स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम स्ट्रेस कैसे पास करते हैं और कैसे उसे रोक सकते हैं
1: जी।
2: अब एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये हमने स्ट्रेस की बात की, अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर बात की, जब चलो हमने हम इतने जागरूक हो गए और हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं अच्छी तरीके से, पर हमारे आसपास, जैसे ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे काम की जगह पर, हमारे आस पड़ोस में, समाज में हम देखते हैं कि लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, वो तकलीफ में है, तो उनकी मदद हम कैसे करें?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन सब के लिए एक शुभ भावना रखें कि जैसे मैं स्ट्रेस से बाहर आ रही हूँ या मैनेज कर रही हूँ वैसे ये भी करें। ये सबसे ज्यादा पहले ये पहुंचता है, हमारा ये जो बेस्ट विशेस है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये पहुंचता है, तो पहले इसे फैलाने दे। दूसरा, जो स्ट्रेस में है उनके साथ हम बातें करें, अगर हमारे नजदीक के हैं, अगर हमारी बातें वो सुनते हैं तो हम उनसे बैठे बातें करें। कहते बातें भूतों को भगा देती है तो कई सारे भूत भाग जाते हैं, ठीक है। फिर साथ में हम मिलके बैठे, थोड़ा दोनों मिलके मेडिटेशन करें, दिल हल्का करें, फिर ऐसी जगह जहां से मुझे शांति मिली उनको भी ले जाए साथ में, और देखा अनदेखा ना करें। ये हमारा काम का चीज नहीं है, उनका है वो संभालने दो, ऐसे ना करें, क्योंकि हम, आपने जैसे कहा, हम सोशल एनिमल है, हमको सोसाइटी में रहना है, तो सबके स्ट्रेस का भी हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, तो उससे बाहर एक तो सबके प्रति हमारी शुभ भावना हो, सब खुश रहे, ये बहुत काम करता है। और उनको हम मदद किस लेवल पे कर सकते हैं, समझो कोई भूख के कारण परेशान है तो हम सदा उसका भूख तो नहीं मिटा सकते, लेकिन कमाई का रास्ता दिखा सकते हैं हम उनको, है ना, ऐसे हम छोटी छोटी मदद हम कर सकते हैं।
2: थैंक यू सो मच वीना बहन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और स्ट्रेस की तरफ देखने का हमारा एक नजरिया जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, और उसमें आपने बहुत बड़ी मदद की है हमारी। आई एम वेरी श्योर हमारे लिसनर्स जो है उनको भी आपकी बातें सुनकर बहुत फायदा हुआ होगा, और वो भी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव जरूर लाएंगे।
1: थैंक यू।
2: एक धन्यवाद के साथ मैं आज का शो यहीं पर खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप फिर से आएंगे और हमें अलग अलग विषयों पर जागरूक करेंगे।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी एक स्पेशल प्रोग्राम सुना स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, और जिसमें हमें मार्गदर्शन कर रही थी ब्रह्मा कुमारी वीणा बहन जी। आज का शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9019904904। इसी के साथ मैं आरजे स्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और स्ट्रेस में खुद की औरों की, सभी की मदद कीजिए।
3: हेलो एंड नमस्कार, सभी सुनने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप मुझे सुन रहे हैं KLE वेनो ध्वनि 90.4 FM पर। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगली बार जब आप खाना बना रहे हो और या खा रहे हो तो मुस्कुराहट के साथ में खाना बनाइए और खाइए, देखिए जीवन कितना खुश होगा ये आपको भी अंदाजा नहीं है। चलिए अभी मुस्कुराइए।

my dear lovely friends, welcome, ladies and gentlemen, people of all the ages, to your favorite show, Be Relax, only on Belgium's first radio station, Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu, aur main hu aap sabhi ka pyara dulara handsome radio dost RJ Ayush. Dosto dekhiye, humne aapko ek commitment di hai ki har roz sham ko 5 se lekar 8 baje tak hum aapka karenge manoranjan aur denge aapko kai sari jankariyan, aur usi commitment ko pura karne mein hum apni ji jaan laga dete hain. Waise hi agar aap kisi ko commitment dete hain, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, ये एक तरह का वचन होता है, तो प्रॉमिस होता है. अगर तो आपने सुना ही होगा एक फ्रेज है जिसे कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए. आज की शाम में हम बात करने वाले हैं उसी एक शब्द की जो आपको आपकी जुबान पर अड़े रहने के लिए एकदम मजबूर कर देता है, और उसी से आपके वैल्यूज और आपके इंसान होने का थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है, और वो शब्द है कमिटमेंट. और इसी के साथ देंगे आपको बहुत सारा मनोरंजन, यानी सतरंगी गानों का तड़का. सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द शो विथ मी, यानी आरजे आयुष के साथ, ओनली ऑन वेनु धोनी 90.4 KLE कनसू.

0: जो भी कहना है कह दो, इतना क्यों डरते हो? तुम हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो? मैं अब तो चला गया हूँ, अब तो जवाब दो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो?
1: मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करते हो?

हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में, और आपने ट्यून कर लिया है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। दोस्तों, द पावर ऑफ कमिटमेंट, अ क्वालिटी दैट हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स एंड मूव माउंटेन्स। कमिटमेंट एक तरह का डेडिकेशनल वर्ड है टू अ कॉज और टूवर्ड्स द गोल, और कह सकते हैं एक तरह का फोर्स है जो आपको पुश करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने में। दोस्तों, हम सभी अपनी अपनी जीवन श्रेणी लाइफ में

Welcome back to your favorite show, Be Relax, और हम बात कर रहे हैं आज द पावर ऑफ कमिटमेंट्स का, और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, और मैं हूं आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूं। दोस्तों, जानते हैं कुछ एसेंस ऑफ कमिटमेंट्स के बारे में। जैसे एट द कोर ऑफ द कमिटमेंट लाइज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड डिटर्मिनेशन। ये एक तरीका कॉन्शियस डिसीजन होता है जो हम अपने पूरे होशो आवाज में लेते हैं, और होशो आवाज में लेना भी चाहिए, जिससे हमें जो पाथ चूज किया है या रास्ता जो चूज किया है कि यार मैंने इस पे कमिटमेंट दी है, उसको पूरा करने का हमें एक लक्ष्य मिले, फिर चाहे वो कितना भी चैलेंजिंग हो सकता है या इजी भी हो सकता है, आपको वो कमिटमेंट पूरा करना ही है। कमिटमेंट कांट गो बियॉन्ड फ्लीटिंग एंथुसियाज्म। ये एक तरीका डीप रूटेड डेडिकेशन होता है जो हमें चलते रहने पर मजबूर करते जाता है विद एडवर्सिटी एंड सेटबैक्स। जरा सोचिए, खुद की पर्सनल ग्रोथ और वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग जो हमें आती है उस वचन या कमिटमेंट को पूरा करने में या उस पर अटल रहने पर, बाय सेटिंग क्लियर गोल्स aligned with our values. It's like planting seeds of growth that blossom into flowers. और उन्हीं फूलों की तरह हम बनाएंगे आपकी शाम थोड़ी सी मनमोहक और सुनाएंगे आपको कुछ जबरदस्त गाने। तो सुनते रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो नमस्कार एंड गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरजे आयुष के साथ बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसू। दोस्तों देखिए, एसेंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया और उसके अब जानते हैं हाउ कमिटमेंट वर्क्स इन पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों जब आप कमिटमेंट को पर्सनल ग्रोथ में ढाल देंगे तब आपको पता चलेगा कि यार मेरा फुल पोटेंशियल तो ये था जिसको मैं अभी तक कर ही नहीं पाया, निखार ही नहीं पाया। इसकी आदत होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाय सेटिंग गोल्स एंड अलाइनिंग देम विद आवर वैल्यूज एंड पैशन, हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स कंटिन्यू इंप्रूवमेंट्स या उनकी तरफ ढाल सकते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट वही होता है जो अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखता है, जो हमको पुश करता है ग्रो करने के लिए, फिर चाहे हम फेल ही क्यों ना हो जाए उस प्रयास में। लेकिन आपको एंटरटेन करने का ये अचूक प्रयास कभी फेल नहीं होने वाला है। तो सुनते रहिए, कहीं जाइए मत, क्योंकि मैं आपको सुनाने वाला हूँ दिल को छू जाने वाले गाने ओनली ऑन वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।

क्या बात है दोस्तों, बने रहने के लिए आप सभी का तहे तहे दिल से शुक्रिया। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके पसंदीदा शो बी रिलैक्स में, और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। और आज इस मस्ती भरी शाम में हम बात कर रहे हैं कमिटमेंट्स की, जहां मुंह से निकला हुआ शब्द कहते हैं कि पत्थर की लकीर होता है। दोस्तों जानते हैं कमिटमेंट कैसे हमारे प्रोफेशनल लाइव्स भी सिक्योर करती है, जिसे प्रोफेशनल फील्ड में भी कमिटमेंट एक ऐसा फोर्स है जो हमें सक्सेस अचीव करने और हमारे गोल्स को पूरा करने में हर तरह से सहायक होता है। वेदर एन एंटरप्रेन्योर लॉन्चिंग अ स्टार्टअप और एन एम्प्लॉई स्टार्विंग फॉर अ करियर, कमिटमेंट ही हमें वो डेडिकेशन देता है जिससे हम अपने काम में वो एक्स्ट्रा पुश, जिसको हम एक्स्ट्रा एफर्ट बोलते हैं ना, वो डालते हैं। ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, जिसे हम अपने कलीग्स या सुपीरियर्स का या जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जीत सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू प्ले सम अमेजिंग म्यूजिक टू मेक योर मूड लिटिल चिल, तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा मेरे साथ यानी आरजे आयुष के साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन पीपल ऑफ ऑल द एजेस टू आवर शो। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। आइए दोस्तों जानते हैं कि कैसे कमिटमेंट हेल्प्स इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर हो सकता है आने वाले हैं तो ये बात जान लीजिए कि इट फॉर्म्स बेडरॉक ऑफ ट्रस्ट एंड लॉन्गेविटी। अपने प्रॉमिसेस को रिस्पेक्ट करके अपने लव्ड वंस का हमेशा साथ देना हर सिचुएशन में, चाहे वो दुख हो या फिर सुख। वी कल्टिवेट द डीप कनेक्शन एंड फॉस्टर अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। कमिटमेंट देना एक रिलेशनशिप में इट्स लाइक अ टू वे स्ट्रीट, जिसमें दोनों साइड से कमिटमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड म्यूचुअल डेडिकेशन स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन द इंडिविजुअल्स। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर दोनों मिलकर थोड़ी सी बात कर लीजिए आपस में, जिससे जहाँ चूक हुई हो या कमिटमेंट की लाइन जहाँ पार हुई हो उसे समझा जा सके और सिचुएशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जा सके, या सॉर्ट आउट कर लेंगे अगर आप बात करेंगे तो। दोस्तों मुझे पता है जितना आप हमारे एपिसोड्स पसंद करते हैं उतना ही हमारे द्वारा चलाए गए सुपरहिट सॉन्ग्स को, तो मैं बजाने वाला हूँ आप सभी के लिए यही सुपरहिट सॉन्ग्स। तो आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

दोस्तों जैसे कि हमने जाना, कमिटमेंट हर तरह से आपकी लाइफ का एक पार्ट है और जैसे कि मैंने आपको कहा, इट्स लाइक अ प्रॉमिस जिसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। पुराने जमाने में एक फ्रेज के रूप में इसको देखते थे जिसका मतलब था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, जिसका मतलब है अपने वर्ड्स के लिए उस टाइम में लोग जान देने के लिए भी तैयार होते थे। खैर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस इस फ्रेज से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी है कि कोई भी कमिटमेंट्स आपको अधूरी नहीं छोड़नी है, उस पर हमेशा अटल रहना है, आपके डिसीजंस पर अटल रहना है। टू कल्टीवेट कमिटमेंट वी मस्ट स्टार्ट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस। दोस्तों पर्पस की क्लियरिटी होने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, हमें एक गाइडिंग लाइट मिलती है जिससे हम बेहतर फोकस करके अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। हमें खुद को ऐसे लोगों से अटैच्ड रखना है जो हमसे हमेशा वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए हमको पुश करते हैं। दोस्तों कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पेशेंस की भी बहुत जरूरत होती है। कई बार अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आप खुद पर डाउट करने लगेंगे, लेकिन आपको हताश नहीं होना है और अपना बेस्ट शॉट हमेशा देते रहना है उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्ले वन सुपर अमेजिंग सॉन्ग जिससे सुनकर आप हो जाएंगे एकदम रिलैक्स। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे शो बी रिलैक्स में, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

स्वागत है आपका एक बार फिर और आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा शो बी रिलैक्स वेलकम के सबसे बड़े रेडियो स्टेशन पर जिसका नाम है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू और मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा आरजे आयुष जो कि आपके साथ हमेशा बना हुआ है। दोस्तों आज हमने जाना कि कमिटमेंट का कितना महत्व है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल ग्रोथ तक ये हमारी लाइफ को डायरेक्शन देते रहता है। इट इम्पावर्स पर्सनल ग्रोथ ड्राइव्स प्रोफेशनल सक्सेस एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। इसी कमिटमेंट से आप अपने छोटे से लेकर बड़े सपनों को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों मसले मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां। तो अगर प्रॉब्लम्स आए तो उन्हें उनसे भागना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है क्योंकि प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसों और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात। हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।